सोई जन जाने हर गुण सदगी आख वखाण जिन घर सेवया तिन सुब पाया सहजेगी घर नाम सुमाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर दूजा महला चौथा किसी तड़ाकिया मित्र सुत नाल पाई किसी तड़ाकिया कुड़म सके नाल जवाई किसी तड़ाकिया सिकदार चौधरी नाल अपने सुवाई हमारा तड़ा रहया सुनाई हम हरसो तड़ाकिया मेरी हर टेक मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई हौ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ जिनसो तड़े करे से जागे चूड़ तड़े कर पछो तागे फिर ना रह मन खोड़ कुमागे हम हरसो तड़ा किया इसका कोई समर्थ ना है ये सब तड़े माया मो पसारी माया को लूजे गावारी जन्म मरे जुए बाजी हारी हमरे हर तड़ा जे हलत पलत।

बोलो गुर अमृत बयना रहाओ। मैं मंथन प्रेम महा बैराग सगुर पुख पाया वड पाग दूजे पाए पवे बिकमाया पागहीन नहीं सदगुर पाया अमृत हर रस हरिया पियाया गुर पूरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा मेरे मंत्र प्रेम नाम आधार नाम जपी नामो सुसार नाम जपो मेरे सज्जन सेना नाम बिना में अवर ना कोई वडे पाग गुरमुखर लेना रहाओ। नाम बिना नहीं जीव्या जाए वडे पाग गुरमुखर पाए नामहीन कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड्डा वड्डा हर पाग कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया। आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सतगुर नाम दड़ाया रस गाए गुण परमानंदा रहाओ। हर गुण गावे हर जन लोगा वड्डे भाग पाए हर निरजोगा गुण विगुण माया मलतारी वेण गुण जन्म मोए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट कीए नानक गुरमुख मत अद कढ़ीए। आसा महला चौथा नाम सुनी ना मुंह मन पावे वड्डे भाग गुरमुख कर पावे नाम जपो गुरमुख परगासा नाम बिना में तर नहीं काई नाम रव्या सब साज ग्रासा रहाओ। नाम में सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे तो मेरा मीत सखाई नाम गीन गए मूड नंगा पच पच मुए देख देख पतंगा आपे थापे थापे थापे नानक नाम देवे घर आपे। आसा महला चौथा गुरमुख हर घर वेल वधाई हल लागे हर रस करसाई हर घर नाम जप अंत तदरंगा जप जप नाम गुरमुख सालागी मारिया काल जम कंकर पोयंगा रखाओ। हर घर गुरु में भगत रखाई गुर तुठा सिख देवे मेरे पाई होम में कर्म किस बेद नहीं जाने ज्यो कुंचरण आए खाग श्री शाने जे वड पाग होवे वड ऊचे नानक नाम जपे सा सूचे। आसा महला चौथा हर घर नाम की मन भूख लगाई नाम सुने मन तृप्त मेरे पाई नाम जपो मेरे गुर सुगमीता नाम जपो नामे सुख पावो नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ। नमो नाम सुनी मन सरसा नाम लाल है गुरमत बिगसा ना बिना कुश्ती मो अंधा सब निफर कर्म किए दुख तंदा हर घर हर जा जपे वड पागी नानक गुरमत नाम लेव लागी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला चौथा राग आसा कर छेवें के तिन हथ कर तंत वजावे जोगी थोतर वाजे बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी यो मनुआ हारंग पेन जोगी हर देव मती उपदेश जुग जुग हर हर एक ओवर।

अकल चानन अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन ना चो हर घर त्याए, ऐसे संत मिलो मेरे पाई, हम जन के तोवे पाए, रघाओ हर घर नाम जपो मन मेरे, अनदन घर लेवे लाए, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर भूख न लग गए आए, आपे हर अपरम्पर करता,

क्यों आखे तू सुपाए भगत भंडार दिगे वर अपने गुण गाक वणज ले जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवें के काफी महला चौथा आया मरण तुरा हो हमे रोईये गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होइए गुरपूरे साबास चलन जानिया लहा नाम सुसार शब्द सुमानिया रखाओ पूर्व लिखे डे से आए माया चलन आज के कल तुरो फुरमाया बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम सारिया जुए खेलन जग के ओ मन हारिया जीव मरण सुख होए जिना गुर पाया नानक सच्चे सच सच सुमाया आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया गुर प्रसादी बुझ सच सुमाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया दर सच्चे सतियार मैल बुलाया रहाओ अंतर नाम निधान गुरमुख पाईए अंदर नाम ते आए हर गुण गाईए अंतर वस्त अनेक मन को नहीं पाईए होमे गर्भे गर्भ आप खुवाईए नानक आपे आप खुवाईए गुमत मन प्रगास सच्चा।

देखो आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मल बटानी सा व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ साहे पठाया साहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

एक वस्त बुझ ता होवे पाक, बिन बुझ तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिसते पाइये हर पुरख सुजान। आसा मोहल्ला पंजवा, एक तुके चौप दे, एक कड़ी दिन समुख को बहुत देहारे। मान ना रहे कैसे मिलो प्यारे, एक पल दिनस मुख को कभू ना बिगावे। दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मुख को पिरे मिलावे। हरहाओ चार पैर त्यो जुगे समाने, रैन पही तब अंत न जाने। पांच दूत मिल पिरो विछोड़ी, ब्राह्मण रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखा।

साथ रब रहया प्रभ सबके साथ पूरा गोर पूरी बंत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवा गुर के शब्द बनावो इहो मन गुर कर दर्शन संचो हर तन।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए गारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने ग्रह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक है सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किस पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बो करता, करने हार न जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया ना गोजासी, जो हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सा मीता, झूठा इओ पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खा खा मोए गवारा।

काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, तप्रव नानक मीठे लागे, आसा महला पंजवा, एको एकी न निहारो, सदा सदा हर नाम समारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे हरहाओ, सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेप निर्गुण रहता, करन करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा महला पंजवा।

मरे न जाए हुक्मे बद कार कुमाए जोड़ विछोड़े नानक ताप अपनी कुदरत जाने आप आसा महला पंजवा ना ओ मरता ना हम डरिया ना ओ बिनसे ना हम कड़िया ना ओ निरतन ना हम भूखे ना उस दुख ना हम को दुखे अवर न को मार नहारा जियो हमारा जियो देन हमारा रहाओ ना उस बंधन ना हम बाधे ना उस तंदा ना हम तादे ना उस मैल ना हम को मैला उस आनंद ता हम सर केला ना उस सोच ना हम को सोचा ना उस लेप ना हम को पोचा ना उस भूख ना हम को तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जचना हम किस नाही एक के ओही आगे पाछे एको सोई नानक गुर खोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा आसा महला पंजवा अनक पाल कर सेवा करिए जीव प्राण तने आगे तरिए पानी पख तरो तज अवमान अनक बार जाइए कुर्बान साई सुहागन जो प्रपाई तिन के संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनहार उनकी रेन बसे जी नाल माथे भगता पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब नेमा कर्म तर्म अर्पो सब होमा गर्भ मोह तज हो वोरेन उनके संग देखो प्रभ नयन निमख निमख एही आराधो दिन सरायन ए सेवा साधो पै कृपाल गोपाल गोविंद साध संग।

सदा प्रफुल्ल काढ़ काढ़ संपट हय रे जाका अपग सब संघ है साधा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लेना संत चरण ओ आयो सरना आचड़े हर साल ग्राम।

पुत्र ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्तनेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमे पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब सरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संत त्रिपता से हर घर त्याय कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रहन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाएगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जबत मन तन सब हरिया कल मर दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया।

सर्व सुख पावे, आवर काहू पे बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापिए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रमनवासी ए रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह समागी, जाकी बख्श ना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री गृह जाके पूरन, प्रभ के सेवक।

बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वडे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रसरना गुर नानक जाको पया दयाला सो जन होवा सदा निहाला आसा महला पंजवां सतगुर साचे दिया पेज चिर जीवन उपजिया संजोग उदरे माए आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सामे लिखिया तुरका रहाओ दसी मासी उगुण बालक जन्म लिया मिटिया सोग मा आनंद चिया गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब कै मन पावे वदी वेर बहु पीढ़ी चाली धर्म कलाघर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु दिवाया पय अचिंत एक लिवलाया ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोले गुर के पान गुजी शन्नी नाही बात गुर नानक तुठा की नींदात आसा महला पंजवा गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट पया जन का प्रताप गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पे पाई रहाओ शरण परे साचे गुरुदेव पूर्ण होई से।

ओंकार सदगुर प्रसाद मैं बंदा बैखरीद सच साहेब मेरा जियो पिंड सब किसद सब किश है तेरा मान निमाने तू तनी तेरा परवासा बिन सचे अनटेक है सो जानो काचा रहाओ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रजाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सुख पाई है जे लह कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेब ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुरे अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो एकन चसा यो कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहर तन अंतर सो छूटे महाजालते जिल गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार हो आज युगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यावो सत सदा हर हर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक के संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार भोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसे हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सचे तिस तनी सुखी हूँ सो पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेख मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी टे गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर ना बिहूनड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस रहे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलाव आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिर जनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो ना टहंदो मूल सो कर रस कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्रापाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा खेद न जानो मूल साई देया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मंड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पात सह आसा महला पंजवा पूर रहा सर्वठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया तुय बिन अवर न कोय नदर ने हारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठाए आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना चूरिए नानक दर्श प्यास लोचा पूरिए आसा महला पंजवा क्या सोवे नाम सार गाफल गह लिया किती इधरी आए वंजन वहदया बोतड़ा चरण मन चढ़ लंगीए आड़ पैर गुण गाए साधु संगीए रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दियो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्स देखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनु तू अस्थिर कर मान है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्र गृह सगल समगरी सामित्या असनाहा रे मन क्या करे है हा हा हिट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन ले लाहा रहाओ जैसे वस्त्र दे ओढ़ाने दिन दो चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत कोर को आहा जैसे अंब कुंड कर राख्यो परत सिंध गल जाहा आवग आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा रे मन लेखे चाले लेखे वैसे लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उटाहा आसा महला पंजवा अबुट बाते पई सिदरी दूत दुट सजनई अंधकार में रतन प्रगासियो मलीन बुद्ध खशनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर ना फल पाए सदगुर मिलई हरहाओ मुए कृपन को कोई न जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कई न पावत हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत टूंडते मन सगल कृष्ण बुझ गई एक बोल भी खपतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कमन वखन आगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेगताया सत वखर तू किन्ने नाही पापी बदा रे नाया सदगुर तेरी आस आया बदल पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा ओटाया हरहाओ गंदन वैन सुने उरझावे नाम लयत अलकाया निंद चिंद को बोध उमायो बुझी उलटाया पर तान पर तान पर ती निंदा अखाद खाए हरकाया साय धर्म से रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरनाया नानक आए शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बंधे जय जानो सो चीत न आवे अंग बुद्ध पे आंधे मन बैरागी क्यों न आराधे ताज कोठरी माहे तू बसता संग सगल दिखे की व्यधे रखाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे पलखिन शीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ तन दुर्गादे काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंदी रस लपटा दे दीप वारी पुख बिधाते बौर बौर जन माधे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुरमिल सब सुख लादे कहो नानक जिन रैन तिहावो मार काढ़ी सगल उपादे त्यो जप्यो पाई पुरख बिधाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावे करी मोह तरंग माने फिर बौर बौर पछतावे अंधे चेत हर हर आया तेरा सोधन नेड़े आया रहाओ पलक दृट देख पूलो आक नीम को तुमर जैसा संग विशीर सिंहाय रे तैसो ही यो पर गृह बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाए तिन ही सो संगी सजन सो बैराना सगल संसार

निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे तिस की सोए सुनी मन हरिया।

दिखावे बहु विद जैसा है ओ तै सारे अनक जोन प्रम्यो प्रम पीतर सुखे नहीं पर विसारे साजन संत हमारे मीता बिन हर हर अनीता रे सा संग मिल हर गुण गाए क्यो जन्म पदार्थ जी तारे रहाओ त्रै गुण माया ब्रह्म की कीनी कहो कौन बे तरिये रे उमन केर अगा गाकरी गुर शब्दी पार उतरिये रे खोजत खोजत खोज बिचारियो तत नानक क्यों जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोल मन मानक पतियाना रे आसा महला पंजवा दो पदे गुर प्रसाद मेरे मन वसया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग क्यों मन त्रिवताना बौर नकत हूं तावो रे हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रैन दिन से गावो रे खिन में थाप्यो थापन हर इसते तुझे डरावो रे रहाओ जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरे चीत न पावो रे नानक दास प्रभु आप पै रहा प्रम पौ मेट लखावो रे आसा महला पंजवा चार वर्ण चौह के मर्दन खड़ दर्शन कर तली रे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचो ही मोय शरीर जिन मिर मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार बिदार गुदारे सो पूरा ए कली रे रहाओ वड़ी कोम पस पागे नाही मोहकम फौज हठली रे कहो नानक तिन जन निर्दलया सा संगत के चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सुल रस पीकी रे रहाओ बहु गुण तुन मुन जन खट बेते अवर ना किश लाई की रे बिखारी निरारी अपारी सहजारी साध संग नानक पीकी रे आसा महला पंजवा हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमख न मन ते टारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे आसा महला पंजवा निकी सा संगानी रहाओ पैर मूर्त पल गावत गावत गोविंद गोविंद वखानी चालत बैसत सोवत हर जस मंत्र चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकुर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा कार बारवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद त्याग सगल सियाणपा पज पार ब्रह्म निरंकार एक साते नाम बाजो सगल दिशे सार सो प्रव जानिए सत्संग गुर प्रसादी बूझिए एक हर के रंग रहाओ सन समरथ एक केरी दूजा ना ही ठाओ महा फौज लंघिए सदा हर गुण गाओ जन्म मरने वारिये दुख ना जंपर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रसोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिए मिल सा संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभु के दीगे सब रस भोग दीन बंद बजी दाता सरण राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाओ हलत पलत सहाय संग एक सिउन लाओ रहाओ वेद शास्त्र जन ते आवे तरण को संसार कर्म तर्म अनेक क्रिया तब ऊपर नाम अचार काम क्रोध अहंकार बिनस मिले सदगुरुदेव नाम दृढ़ कर भगत हर की भली प्रभु की सेव चरण शरण दयाल तेरी तू निमाने मान जी प्राण आधार तेरा नानका प्रतान आसा महला पंजवा डोल डोल महा दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस।

गुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने, छे प्रगट घर द्वारे।

मो कुटुंब बिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास माने मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर मना लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा महला पंजवां ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पागी नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवां गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईते ऊते काट काट काट काट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एकै एकै सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवां हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवां अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारथ हृदय चरण बसाहे एह मुक्ता एह जूता रख हो संत संगाहे नाम त्यावो सह समावो नानक हर गुण गावे आसा महला पंजवां ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे हरहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवां एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्यावो हृदय बसाओ जिबन को नाही प्रसरणी आये सर्व फल पाईए सगले दुख जाही जीन को दाता पुरख विधाता नानक कट कट आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम ते आवे सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हों कर्म कमावे बाध्यो नलनी प्रंसुआ कहो नानक जिस सतगुर पेटिया सो जन ने चलतिया आसा महला पंजवां कर चौदवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओह निहो नवेला अपने प्रीतम स्यों लाग रहे रहाओ जो प्रापावे जन्म न आवे हर प्रेम भगत हर प्रीत प्रचय प्रसंग मिलीजे यो मन दीजे नानक नाम मिले अपनी दया करो आसा महला पंजवां मिल राम प्यारे तुम मिल तीरज को ना करे रहाओ सिमरत शास्त्र बहु कर्म कमाए पर तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संजम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वस आसा महला पंजवां कार पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तही कर जावे लोभ विखिया विखे लागे हर विदचित दुखाही खिर पंगना के मान माते असुर जाने नागी रहाओ वेद सतर जन पुकारे सुने नाही डोरा निपतबाजी हार मुका पछतायो मन फोरा ध्यान सगल गैर वजे परया दीवान लेखे ना परे जे कार्ज रहे उल सोए कामना करया ऐसो जग हुए गुरे दिखायो तो एक कीर्त गाया मान तान असयान सर नानक आया आसा महला पंजवां बापार गोविंद नाए साध संत मनाए प्रे पाए गुण गाए पंच नाद तूर बजाए रखाओ कृपा पाए सह जाए दर्शाए अबरत्या गोविंद स्यों संत सेव प्रीत
नाथ रंग लालन लाए, गुर ज्ञान मंदिर राय, रहसाए नहीं आए, सहजाए मन धान पाए, सब तजी मन की काम करा, चेर चेर चेर चेर पया, मन बहुत प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो, मुझे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए, गल लाए, आसा महला पंजवां।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निकर्त से थानः हार रस रसे मानः लाती त्रिपुगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन बिद सुनीगा।

बाहर जातो उल्ट परावे, मूर्ख होए न आखी सूजे, ये वारस नहीं कहया बूझे, पिता माता जल से लूजे, उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को तावे अवगुण धोवे, किन गुरसेवे सहज न होवे, हीरा नाम जवे हरलाल, मन मोती है तुझका माल, नानक परखे नजर निहाल, आसा महला पहला, गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान, गुरमुख महली महल पछान, गुरमुख सुरत शब्द निशान, ऐसे प्रेम भगत विचारी, गुरमुख सचा नाम मुरारी, अरहाओ आए निस निर्मल थान सुथान, तीन पावन ने केवल ज्ञान, साचे गुरते हुकुम पछान, साचा हरख नाई ते सोग, अमृत ज्ञान महारस भोग, पंच सुमाई सुखी सब लोक, सगली जोत तेरा सब कोई, आपे जोड़ बिछोड़े सोई, आपे करता करे सोई, ताए उसारे हुकुम सुमावे, हुकमो वरते जोत पावे, गुर बिन पूरा कोई न पावे, बालक गिरद न सुरत प्राण, पर जो बिन बूढ़े अब महान, बिन नावे क्या लहस निदान, किसका आन थान सहज न जाना, परम पुलाना फिर पछताना, गर पागी बौरा बौराना, बूर्त जग देखे तो डर पागे, सदगुर राखे सेवड़ पागे, ना

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार परत सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना ए तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मेले काल कंटक मारे सज पेले यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैली हर पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरप गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिथाए पीए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनग सुन मान्या शब्द विचारी आत्मा चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर बरसायन गुरमुख।

चाह तुम्हारे रिस प्राण आधारी ही ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जे ती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुक्म ना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिन ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई विण गुर पूरे कोई न जानी माया मोहे दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वसे सब दुख विसार नहार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान कर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साज दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए नानक साज कहे विचार हर का नाम रखे उर तार हर भगती राते मुख द्वार आसा मोहल्ला तीजा आसा आस करे सब कोई हुक्मे बूझे निराशा होई आसा विच सुते कई लोई सो जागे जागावे सोई सतगुर नाम बुझाया विण नावे भुख न जाई नामे तृष्णा अगन बुझ नाम मिले तसे रजाई अरहाओ कल कीर्त शब्द पछान एहा भगत चूके अवमान सतगुर सेवे होवे परवान जिन आसा कीती तिसनो जान किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए कर कृपा नामा नमसाए त्यो सर दीजे आप गवाए हुक्मे बूझे सदा सुख पाए आप करे तय आप कराए आपे गुरमुख नाम साए आप भुलावे आप मार्ग पाए सच्चे शब्द सच सुमाए सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख जुग जुग आख वखाणी मानमुख मोहे परम पोलाणी बिन नावे सब फिरे बौराणी तीन पवन में एक का माया मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया वो कर्म कमावे दुख सबाया सतगुर सेव सदा सो पाया अमृत मीठा शब्द विचार अनदन भोगे हो में मार तेज आनंद कृपा तार नाम रते सदा सच प्यार हार जा पढ़।

बिन नावे सब नीच जात है, दिष्टा का कीड़ा होए, हाँ हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे सुमाए, आसा मोहल्ला तीजा, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे, आगे जुग जुग प्रकट होए, ए मन रूड़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग लय ना जाए, अरहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल जोते पार, बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पए पाए जो रते, सिवती सच सुमाओ, पए बिन लाग न लग गई, नामन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने, झूठे ठाओ न कोए, जिसनु आपे रंगे सो रपसी, सत्संगत मेलाए, पूरे गुरते सत्संगत उपजे, है जे सच सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रहे, जैसे पल टोर, जिनकी तेत से ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे, गुर कह

सात सैत सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जे जिया डन को लय न जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चलावो लै लहा गुरम कर आव सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यो सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेकिए नेचल घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ नीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु फावे सो फला तेरे पाने कार जिरास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरघड़े कर चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए यो तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार बिखिया के फीके।

दिया सब नी लिया, तर्मी कर्मी हूं पया, नन्ने ना पूनित पुगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सोहागण पैने, तंतन कब हूं मैं मिलिया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सबक जाने, अंतर बाहर रब रहे, पपे पाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़े कामण परम पुली हर वरना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मुनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे

शांत करती जा। साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो। भगत

तेरा गंढ लागे गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तात थम्या ने करबस्या आए नाम या जे नाम ले नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे। जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले तावत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाने मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाने ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान। यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गारब लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे। अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। यों कहे नानक मन तू गारब अटिया गारब लदया जावे। मन तू मत मान करे के हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हौ बुद्ध है सच शब्द मलख हो। हो निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। यों कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे सेजन प्रवान होए। जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। यों कहे नानक तन सोवेला जित में सतगुर मिलिया सो सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमार्ग पाए इनका किश ना वसाई। तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। यों कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए।

फिर जन्म है नानक हर पाए तू हर तेरा सबको अब तुद उपाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नाही सब चले चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सब गुर पिटिया।

अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किसी जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरम खिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर घर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु,

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ वंज वटाउड़िया तै क्या चिर लाया मोलत पुनड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया

फल मैयल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा ते हरचन दौरड़ी अस्थिर किश नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही भाव दुतिया जालिए मीत जो बन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़ पाग पाईए सुख सहज समाही

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे, मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे, मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे, जाचक जन राखत मान, प्रमाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मिल नहा सेज सुहंतिया, प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन।

ताग, तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद, ओना पे आवे ओई साध, कूड़ी राज कूड़ा वापार, कूड़ बोल करे आहार,

हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे देव डेआईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी,

तित जित मुख नाम ना ऊचर है बिन नावे रस खावे नानक एवै जानिए तित मुख तुका पाहे महला पहला पांड जमिए पांड निमिए पांड मंगण वी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पांड मुआ पांड पालिए पांड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सराहिए भागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कढ़ीए कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडीए जा रहना नाही आयत जग ता कायत गार बहंडीए मंदा किसे ना आखिए पढ़ अखर एहो बुझिए मूर्ख नाल ना लुजिए श्लोक महला पहला नानक फिके बोले।

जियो गोर चरण लाघम बिनवता पूछत कहे जियो पाया कावन काज जग उपजे बिनस कहो मोहे समझाया देव करो दया मोहे मार्ग लाभो

तपी सन्यासी बो तीर्थ प्रमना लुंजत मुंजत मोन जटा कर अंत तऊ मरना ताते सेवियले राम ना रसना राम नाम हित जाके कहां करे जमना अरहाओ आगम निर्गम ज्योतक जाने बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जाने अंत तऊ मरना राज भोग अरशद सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे कहू ना उबरना कहो कबीर।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मोए तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

पिस्त छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा गगन नगर एक मूद न बरख नाद कहा जो सुमाना पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम हंस ले सिधा।

आए। राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यो पूल नहीं कही है रघाओ। कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए। सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई। साकत स्वा

की आस करे जम निहारे ससा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरभ कर हो।

आस बड पाग हमारा तुर नर मुनजन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोए ब्याए चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गमदिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरे हो लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरे।

सब जग आन तनायो ताना हराओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरण आकाश की कर गए बनाई, चांद सूर्य दुई था।

सूते सूत मिलाए कोरी, आसा अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होवे, नाही राम एयाना, पूजो

चंदन हम एरंड बापर संग तुम्हारे बसा नीच रूह ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा सत्संगत मिल रही है माधो जय

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहु को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कण

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सकाई। हर बिन होर रास कूट।

माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौशन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भक्त जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई।

निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश अरहाओ ता गुरु तुमको होए दयाल संत संग तेरी प्रीत तापड़ पात परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता रंग तमासा पूर्ण आसा तवे ना व्यापे चिंता पवर तुम्हारा ओ मन होवो हर चरणा हो कौला नानक दास उन संग लपटायो।

तन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खुआ सब त्यागे जंपर ऊठ सिदास हुए अनन महर की दृढ़ता आपस को जानात जो अनिंद निंद कर छोड़ो।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माल पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे ती रंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ तर्क करत अनक बो पाती

गूजरी मोहल्ला पंजवा कबू हरस्यो चीत न लायो धंधा करत बेगानी औद गुणित नाम ना गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक युद करत आयो बिसरत प्रभ केते दुख गनिये मामोनी खायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो न मोहे कुमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथिया पसदा भगवंत रखाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समर्थ श्री तर सरणता की गही मुगत जुगत रवाल साधु नानक हर निध लही गुजरी महला पंजवा कार चौथा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद चाड़ सगल सियाणपां।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बग

आराध श्री कर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण शरमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सत्संग दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधर बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभु स्वामी ओत पोत प्रभु साथ। शरण प्रयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

सुभचिंतं गुर शब्द हारमणं मत तत् ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चाल चित्त विद प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिड़ं मती गुरवाक शब्द रतन परमात परमना चूकई जग जन्म व्याद खापं अस्थान हर ने केवलं सतमती नाम तपं इहो जग मोहित व्याप्तं दुख अदक जन्म मरणं भज सरण सदगुर उबर है हर नाम हृदय रमणं गुरमत निचल मान मान मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंत

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी। संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे सान परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पगमाया तारी। संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। ओ प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी। हर एको सूत

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्या

अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय वावा कर्मी पाई है आप दया कर दे नानक वावा गुरमुख पाई है अनदिन नाम लए मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी नाही जाए जे बो तेरा लोची है विण कर्मे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना होवई ना होए दुख सहाग नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समाग।

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अगन जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

मन की कटिए मैल सा संग उठया जन मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप इसो लायन रंग जेदी सब तारिया ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा बार विडानड़े होमस तुमस कूका पईया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा सची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी सावेला प्रवान जित सतगुर फेटिया होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया तत ज्ञान लाय ध्यान दृढ़ समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सो खेटिया परख खजाने पाए से बौड़ ना खोटिया। श्लोक महला पंजवा वेशो हुए जंबूर खवे ना वंजन गाखड़े जे सो तनी मिलन नानक सुख समूह सच महला पंजवा जिमी विसंदी पानी है ईदन रखे पाहे नानक सो आहे जाके अडल हब को पौड़ी तेरे कीते कम तू देही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पै बिस्माद दे कुदरत तेरिया सरन परे तेरी दास कार गत होए मेरिया तेरे हथ निदान भावे तिस देह जिसनु होए दयाल हर नाम से लेहे अगम अगोचर बेअंत।

आओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है दो सुख करत महाप्रभुडो अनक जोन परमई है रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो यो अवसर कद पई है प्रमत फिरत तेल के कप ज्यो गात बिन।

मार्ग कैसे जीवे रग राई, तनना बोना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रखाओ, जब लग तागा बाहो बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही, ओशी मत मेरी जात जुला। हर का नाम लयो मैं लाह, कहत कबीर।

देत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं पाव भूत सर्वगतं एक ओंकार सब

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइय। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइए। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध।

दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पेखत संग सब कै।

वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम समिथया संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे जा

तेरे मन सच्चे पाने जिन्ना आपे गुरमुख देव डियाई ते जन सच्ची दरगे जाने। सलोक मर्दाना पहला कल कलवाली काम माद मनुआ पीवन हार क्रोध कटोरी मुहे परी।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, इन बिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया समाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई। लाहा सदगी होए, खाद खर्चे तोट न आवई। सदा सदा ओ दे, सहसा मूल न होवई। हांत कदे न होए, नानक गुरमुख पाई है। जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब कट अंदर, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जहर। जो शक्ति गोबार कर, वर्त्या सुनहर। उत्थे वेद पुराण ना साहता, आपे हार नर हर। बैठा ताड़ी लाए, आप सब दूगी बार। अपनी मित आप जान।

इंदु मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आवंदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाए अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो योगी जुगत सो पाए जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते योगी की नगरी सब को वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना सुजई।

जिन जेवा हारस ना चखेओ सा जेवा जल जाओ अनस सद नानक सतगुर मिले फल पाया नाम वडाई दे वढ़ंस महला तीजा माया मोह गुबार है गुर बिन ज्ञान न होई शब्द लगे तिन बुझया तूजे परज बगोई मन मेरे गुरमत करनी सार सदा सदा हर प्रभ रवे ता पावे मुख द्वार रहाओ गुणा का निदान एक है आपे दे ता को पाए बिन नावे सा विछड़ी गुर के शब्द मिलाए मेरी मेरी कर दे कट गए तिन हथ केहो न आया सदगुर मिले सच मिले सच नाम समाया आस्था मनसा एव शरीर है अंतर ज्योत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वढ़ंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर के

निर्मल नाम से मन आए परमे भूला फिरे संसार मर जन्मे जम करे खुवार नानक से भागी जिन घर नाम ते आया गुर प्रसादी मन मसाया वढ़ांस महला तीजा होमे नावे नार विरोध है दोई नाव से एक ठाए होमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ होमे सब शरीर है होमे ओपत होए होमे वड़ा गुबार है होमे विच बुझ न सके कोए होमे विच भगत।

नित पखा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी टोवा। नेतन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला।

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महल

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रा मेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख पीसर तब ही साध।

पूरे मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पाव वढ़ांस मगल्ला पंजवा सार संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ए रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ांस महला पंजवा।

प्रीतम भाई मैं मिलियो मित्र सुखदाता, ओ जी की मेरी सा बेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हम एक खेन तिस बिन रह ना सका।

बनाया अमाली बिन फिर काम न आए जा से बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए होवारे तिन सुहागनी अमाली तिनके धुआंस पाए जिचर दूजा परमसा अमाली तिचर मैं जानिया प्रदूरे जा मिलिया पूरा सतगुरु अमाली ता आसा मनसा सा पूरे मैं सर्व सुखां सुख पाया अमाली तेर सर्ब रहा पर पूरे जन नानक हर अंग माणिया अमाली गुर सतगुर कै लग पैरे वढ़ांस महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सच्ची बाणी सच धुन

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय पुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर से

ब्राह्मणा साभ्यो पाइगे ने आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे, मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे, खसम पावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी, नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म हुआ तुर कदे, सब उपाय ने आप आपे नजर करे, वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाय आप आपे सर्व सुमाना, सर्वे सुमाना आप तू है, उपाय तंदे लाइया, एक तुझ ही किए राजे, एक ना पेख पवाइया, लोभ मोह तुझ किया मीठ, एत परम फुलाना, सदा दया करो अपनी, ताम नाम खाना, नाम तेरा है सच्चा सदा, मैं मन पाना, दुख गया सुख आए सुमाना, गावन सुर नर सुगड़ सुजाना, सुर नर सुगड़ सुजान गावे, जो तेरे मन पावे, माया मोहे चेते नाही, अहला जन्म गवावे।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सतगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार भला

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर वा पार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया, सत्य शब्द बैरागो राम। मुख मस्तक भागो सत बैरागो, ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना, सब देखो में मारी। साचे शब्द लाग मत उपजे, गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन, हर आवे मस्तक भागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वडिया ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए, हुक्मे मेल मिलाई राम। हुक्म मिलाई सह समाई, गुर का शब्द अपारा। सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच सवारण हारा। पाओ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन, अगम अगोचर हुक्मे रहा सुनाई। वढ़ांस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो। अपने कर तू सुख वस, ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके, साचे शब्द लिवलाए। सदा सच रत्ता मन निर्मल, आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विभूति, मन मुखमोही जम काल। कहे नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए, बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पूछ तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर घर नाम सखाई। मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे, दूजे पाए खुवाई। बिन नावे को छूटे नाही, साबादी जमकाल। नानक अंतर तेरे निधान है, तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै, एक सच लगे वापारा। सदगुरु सेव ने अपना, अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा, हर नाम प्यारा। नामे नौन दपाई, मन माया मोवे आपे। दू संतापे दूजे पद गवाई, होमे मार सच शब्द सुमाने। सच रते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है, सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना, से जनवड भागी राम। जो मन मारे अपना, से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लिव लागी, अपना आप पछाणिया। मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख, सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी, माया मुहे प्यारी। मनमुख सोए रहे अपागे, नानक सहजे सेवे गुर अपना। से पूरे वडभागे, वढ़ांस महला तीजा। रतन पदार्थ वणजी है, सदगुर दिया बुझाई राम। लहा लाभ हर भगत है, गुण में गुणी समाई राम। गुण में गुणी समाए, जिसे आप बुझाए। लहा भगत सह सारे, बिन भगती सुख ना होई। दूजे पद खोई, गुरमत नाम आधारे। वखर नाम सदा लाभ है, जिसनु एत वापार लाए। रतन पदार्थ वणजिए, जा सतगुर दे बुझाए। माया मोह सब दुख है, खोटा यो वापार आराम। कूड़ बोल बिग कामणी, बहु वदे विकारा राम। बहु वदे विकारा सहसा यो संसार, बिन नावे पद खोई। पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणे, बिन बूझे सुख ना होई। आमन जाना कदे ना चूके, माया मोह प्यारा। माया मोह सब दुख है, खोटा यो वापारा। खोटे खरे सब

मन इच्छे अड़ा फल पाई गए राम, मन इच्छ पाई गए प्रवत आईये, मिटे जम के त्रासा, गोविंद गाया सा संगाया, पई पूर्ण आसा, तज मान मोह विकार सगले, प्रभु कै मन पाईये, बिनवंत नानक दिन सरैणी, सदा घर घर त्याईये, दर वाजे अनहद वाजे राम, काट काट घर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा बेराजे, अगमे अगोचरी उच्चा, गुण बेअंत किस कहण न जाई, कोई न सके पहुचा, आप उपाय आप प्रद पाले, जी जंत सब साजे, बिनवंत नानक सुख ना भगती, दर वजे अनहद वाजे, राग बढ़हंस महला पहला, कार पंजवा अलहानिया, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तन दे लाया, मोलत पुन्नी पाई परी, जानी अड़ा कत चलाया, जानी कत चलाया, लिखिया आया, रुन्ने वीर सवाए, काया हंसती आवे छोड़ा, जांदर पुन्ने मेरी माए, जेगा लिखिया तेगा पाया, जेगा पुरब कुमाया, तन सरंदा सच्चा पातशाहो, जिन जग तंडे लाया, साहेब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, इथे तंदा कूड़ा चार देहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना, ज्यो में माना, काहे गर्व की जय, जित सेवे दरगे सुख पाई है, नाम से काली जय, आगे हुक्म ना चले मूले, सिर सिर क्या विखाना, साहिब सिमरो मेरे पाई हो, सबना यो पयाना, जोत पावे समृत सोचिए, हीलड़ा यो संसारो, जल थल महील रब रहया, साचड़ा सिरजनहारो, साचा सिरजनहारो, अलाख्य पारो, ताका अंत न पाया, आया तिनका सबल पया है, एक मन जिनी ते आया, ताहे टाए उसारे अपे, हुक्म सवार नहारो, जोत पावे समृत सोचिए, हीलड़ा यो संसारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए,

का सहज सुभाय। वढ़ांस मोहल्ला पहला, बाबा आया है उठ चलना, यो जग झूठ पसारो वा। सच्चा कर सचड़े से भी है, सच करा सत्यारो वा। कूड़ लभ जा थाए ना पासी, अगे लाए ना ठाओ। अंतराओ ना बैसो कही है, जो सुनिए कर काओ। जमण मरण वड्डा वेछोड़ा, बिनसे जग सुबाए। लव तंदे माया जगत पुलाया, कार खड़ारू आए। बाबा आवो पाई हो, गाल मिले मेल मेर दे आसीसा गए। बाबा सजड़ा मेल ना चुकई, प्रीतम किया दे आसीसा गए। आसीसा दे वो भगत करे वो, मिलिया का क्या मिलो। एक पूले नहावो, थे हो थावो, गुरसबदी सच खेलो। जा मार्ग नहीं जाना, शब्द सुमाना, जुग जुग साचे वैसे। साजन सैन मिलो संजोगी, गुर मिल खोले फासे। बाबा नांगड़ा आया जग में, दुख सुख लेख लखाया। लिखेड़ा सहा ना टले, जेड़ा पुरब कमाया। भाई साचे लिखया अमृत बिखया, जित लाया तित लागा। कामण यारी कामण पाए, बहु रंगी गल तागा। होशी मत पया मन होचा, गोड़ सा मक्खी खाया। ना मरजाद आया कल पीतर, नांगो बंद चलाया। बाबा रोवो जे किसे रोवना, जानीड़ा बंद पठाया है। लिखेड़ा लेख ना मेटी है, दार हाकारड़ा आया है। हाकारा आया जात पाया, रुन्ने रोमण हारे। पुत भाई भातीजे रोवे, प्रीत में अत प्यारे। पै रोवे गुणसार संभाले, को मरे न मोया नाले। नानक जुग जुग जान सिजाना, रोवे सच संभाले।

गुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए सच्चे ही सच राती सच्चे शब्द सदा सुख पाया होमे गई पराती फिर निर्मायल सदा सुख दाता नानक शब्द मिलाए फिर विशुनिया पी मिले जे सदगुर लागे साचे पाए।

करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने।

सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझणहार मूर्ख आप गणाए दे मर जमे हुए खुवार नानक रतना सो लहे जिस गुरमुख लगे प्यार सदा सदा नाम उचरे हर

गुर प्रसाद सोरठ महला पहला कर पहला चौप दे सबना मरना आया विछोड़ा सबनहा पुछो जाए सियाणिया आगे मिल के नाहा जिन मेरा साहिब विसरे वड्डी वेदन तनाह की सहायो साचा सोए जा की नदर सदा सुखोए रहाओ वड्डा कर सालाना है की होसी सोए सबना दाता एक तू मानस दात न होए जुत पावे सोचिए रन के रुन्ने होए तत्ती उपर कोड़ गढ़ केती गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगुण चेतड़े।

की खबर ना पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से ना पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा कहना कथन ना जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम न पागे सच नाम वड्याई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज विड़ाना जल थल।

हम ऊरे होचे तू गौरा हम हौरे तुझकी मन राते अहनस प्रभाते हर सना जाप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे अहनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दिसे किस साला ही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर।

नाच माद पिता सुद बंधव नाच कामना नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई वज्र कपाट मुक्ति गुरमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे चूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचा चारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों साकत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिए रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर मिले हर दे रहा संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाई है हर पाई गे सतगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले हो नानक सिफत सुमाए।

मन रे समझ कवन मत लागा, नाम सार अनस लोप हाने, हे पछताए अपागा रखाओ। आपत को हरख जात को रोवे, हे दुसुख ना लेन लागा, आपे दुसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हर ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया,

प्यारे रखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सराई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा, मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सच्ची सजबाणी दो जन अनजन जागा, मां गंभीर सदा सुखदाता जिसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा, उपाय गुरु विचारा हर के रंग।

लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई, मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई, पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम, मन रविया पाई, साची प्रीत पे।

सब जग मछली हर आपे, आप पुल न पुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आव जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तब तापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तुलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निदान।

जिन घर त्याया सब के तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा तन दिया सुख दाते निखोट न कब ही जाई, अंध पया सुख सहज समाने सदगुर मेल मिलाई, मन नाम जप नाम आराध अनदिन नाम वखाणी, उपदेश सुन सा संतन का ता चूकी कान जमाणी।

आद एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरहाई सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तूरी कौ बल जाई यो मन तेरा पाई रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा यो मन तय को दिशा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रा मिलो देव उपदेशा मां न कीजे शरण परिजे करे सो पला मनाईये सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजे क्यों दर्शन हर जियो पाईये पयो अनुग्रह पर

सेजन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस दिन अमस्या ते नर त्रिसंतर खाई हर आराध्य अरोग अनदाई जिसनु मिस्रे मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रखाओ जे जन ओढ़ गही प्रातेरी से सुविए प्रसरणे जे नर बिसरिया पुरख बेधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाई ते मां आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुरते बेमुखाई ते नरक घोर में परया जित को लाया तिद घी लागा तय सो ही वरतारा नानक सह पकड़ी संतन की हृदय पय मग चरणारा तोरठ महला पंजवा राजन मैं राजा उरझायो मानन मैं अभवानी लोभन मैं लोभी लोभायो क्यों हार नरचे ज्ञानी हर जन को ई सुहावे ते निट कर सेवा सदगुर हर कीर्तन ही तृप्तावे रहाओ अमल सो अमली लबटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कहलीना प्रसंत से हितकारी विद्या में विद्यं सीरत्या नयन देख सुख पावे जैसे रसना साध लुभानी त्यो हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी कापूर सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रा मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम उज्जल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चदर सियाने

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

मन वसिया अविनाशी ताको बिघन न को लागे। जो सतगुर अपने राखे चरण कमल बसेरे अंतर अमृत हरस जाखे। हर सेवा सेव प्रवे अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवां माया मोह मगर अंधियार है

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए छानी रखाओ। जे बा स्वात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांग है तब कौन पड़दा तेरा ठक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अजुत अविनाशी आन दिन हर अंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कदा सुहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभ हो बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संतो या बतावो कारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी।

ए भीतर ते इनको डार हो, अपन निकट बुलाओ अपनी बिद आप जनाव हो, हर जन मंगल गाव हो रखाओ, बिसर नाही कहू ही एते, हे विद मन में पाव हो, गुरपूरा फेट्यू वड पागी, जन नानक ते न ताव। सोरठ महला पंजवां, जाके सिमरन सब कछ पाइए, बिरती काल न जाई, ते प्रत्याग अवर कतरा चो, जो समय रहा सुमाई, हर घर सिमरु संत गोपाला, सा संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवे काला रखाओ, सार संभाले नित प्रतपाले, प्रेम सहित गल लावे, कौ नानक प्रभु तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे।

जन की लाज रखाई, साध संग तेसा फल पाए, सदगुर कै बल जाय, फलत पलत पव दोवे सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, अटल बचन नान गुर तेरा, सबल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब के की है, सोई संसगाई, अपने सेव की आपे रख, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्ब दयाल। अरहाओ अन दिन नानक नाम तिहाए, जी प्राण का दाता, अपने दाज को कंठ लाए राखे।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो नै पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब टूंडन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊखा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्वथान को राजा ते अनहद शब्द।

पावो, जीव के संग सहाई ही रखाओ। नारायण प्राण आधारा, हम संत जनारे नारा। पतत पुनीत कर लीने, कर कृपा हर जस दीने। पार ब्रह्म करे प्रतपाला, सा जी संग रखवाला। हर दिन रैन कीर्तन गाइये, बौड़ न जोनी पाइये। जे देवै पुरख विधाता, हर हस्ते नहीं जाता। यम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक सरणी पाया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे कीती पूरी। प्रभ रव रया पर पूरी, खेम कुशल पया इसनाना। पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना, गुर के चरण कवल तारे। बिघन ना लागे तिलका कोई, कार्य सगल सवारे। हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए, पदत पुनीत सब होए। रामदास सरोवर नाते, सबला थे पाप कमाते। गुण गोविंद नित गाइये, सा संग मिल त्याईये। मन बांछित फल पाए, गुर पूरा हृदय ते आए। गुर गोपाल आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा। जन नानक नाम ते आया, प्रभ अपना बिरद रखाया। राग सोरठ महला पंजवा, दैद सदन मेघ कटा काट। दामन चमक डरायो, सेज अकेली नींद नौ नैन। तिर परदेश सिधायो, हुण नहीं संदेश रो मायो। एक उसरो सिद्ध करत लाल, तब चतर पात्रो आयो। रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो, सर्व गुणा सुखदायो। मंदिर चर के पंथ निहारो, नैन नीर पर आयो। हो पीत पयो है बीचो, सुनत दिस निकटायो।

रामदास त्रुवर नाते तब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर स्नाना गुर पूरे कीने दाना सब कुशल खेम प्रतारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे हरहाओ सा संग मल्लाती पार ब्रह्म पयो साथी नानक नाम त्याया आद पुरख प्राप पाया सोरठ महला पंजवा जिद पार ब्रह्म चित आया सो कर दिये वसाया सुख सागर गुर पाया ना सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आड़ पैर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सो गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्वनिधान सो पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सदगुर की वडियाई मान इच्छे बल पाई संतो दिन दिन चढ़े सवाई रहाओ जी जसा पय दयाला प्रभु ने कर दीने सह सुपाय मिले गोपाला।

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सरपस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व तोग पूर्ण पूरा सदगुर पाया।

तार सगल जगत है जैसे सुबना बिनसद लगत न बार रखाओ बारू पीत बनाई राजपत रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो खां गवार अजहू समझ कछ बिगड़ो नाहिन ताज ले नाम मुरार कहो नानक रिज मत साधन कहो वाख्यो तोय पुकार चोरठ महला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई सागर जगत अपने सुख लागे हो दुख में संग न होई रहा दारा मीत पूसन बंदी सगरे तन त्यों लागे जब ही निरतन देखो नरको संग छाड़ सा भागे कहो का या मन भौरे कहो इनसे उन्हों लगायो दीना नाथ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ था छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर निज पोखयो फस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखेन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्य गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पै नहीं जा कह कंचन माटी मान है रखाओ नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

सागर तो बैरागी सबन वेद्या मेरी माई अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई आओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हिरदे शब्द सदा पै रचिया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले आवत वर्ज रखावे सहजे माता सदा रंग राता साचे की गुण गावे मनुआ पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाई जेबा नेत्र सोतर।

लाई, अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई,

राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पए हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग ठा

सास मास तब जियो तुम्हारा, तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहिबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइए, पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चितन किया, कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक, किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया, जीव ते हां मर रही है। तनासरी मोहल्ला पहला कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तप हे आओ जीड़ा बिल लाए। फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर साथ मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखण कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए, ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोय। तनासरी मोहल्ला तीजा, नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे। अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए। हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए। रहाओ सच सिमरिया होवे प्रगास, ताते बिखिया महे उदास। सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे, जिसका जीव तुस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए।

साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरि सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नव शेख खट बोले मुख आगर।

चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गाव्या सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो पाई हर कीरत हर पौजल तीर्थ हर दर तिनकी उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जिन हो जानी हरहाओ आपे गोर चेला गए आपे आपे हर प्रचोज मडानी जन नानक आ मिलाए तुई हर मिलसी अवर सब त्याग ऊहा हर पानी।

कहो नानक गुर एह बुझायो प्री प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बैरानी छाडी अंग बुद्ध मोह मन बसन दे कर गढ़ा गाडी रगाओ ना को मेरा दुश्मन रहया नाम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसायो पीतर ता गुर ते सोजी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरगा ता मेल कियो मेरे राजन बिरसो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल मैयल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा तनासरी महला पंजवां जाते दर्शन पेटे साधु पले दिन ओए आए मां आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए अब होए राम जसो मन गायो पयो प्रगास सदा सुख मन में सदगुर पूरा पायो रहाओ गुण निधान दिल पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा पई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोथा का होमे रोग मिटे कृपा ते जानते पए बिबाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जनते काढे तिस गुर कह कुरबाणी तनासरी महला पंजवां जिस का तान मन तान सब तिसका सोई सुड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ विद नीकी खटानी जी की एक ही पैमानी आवर जदन कर रहे बहुत तेरे तेन तिल नहीं कीमत जानी रगाओ अमृत।

गीत हर चंदौरी बन हर पात्रे ए है तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होद देखो सो गर्द पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचि आवत विखेठ गौरी प्रीत। उत्तम संत पले संजोगी ए जुग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ ताज बद रहे जीत। जन्म जन्म के किल विग दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे क्यों विश्राम निध पाई।

वो मन छूटे बिरस जाए परमाई अंधरूप रवे उसा मध्य जल कद पेखो जाई तुम दयाल किरपाल किरपा निध पतत पामन गोसाई पोर सूख आनंद राज पाए मुक्ते निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ के मन पाई नाम जपत तिसना सा बुझी है नानक त्रिपत अघाई तना श्री महला पंजवा जिन कीने वसे अपने त्रै गुण पावन चतर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या यो जंत विचारा प्रभ की ओढ़ गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याल तब हुटो अरहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोहे ओडीठी ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सबके लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ ओं बलिहारी सतगुरे अपने जिन यो चलत दिखाया गूजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काट।

खंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम गी सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लियो अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू सुमरत पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभ को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो। रहाओ अगर कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, ऊंच नीच सुख दुख, त्रास नाही तिसना भूख, मन बासना रज बिखे ब्याद, पांच दूत संग महा असाद, जी जहान प्राण तन तेरा, नानक जान सदा हर नेरा। तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर, रखे जन की आप, तरन तारण हर निध,

आद अंत दयाल पूर्ण, तिस बिना नहीं कोए। जन्म मरण निवार हर जप, सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथय शासक, भगत करे विचार। मुक्त पाइए साध संगत, बिरस जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का, राज पूंजी एक।

फिरत पेटे जन साधु पूरे गुरु समझाया आन सगल विद काम न आवे हर हर नाम ते आया ताते मोए धारी ओड़ गोपाल शरण परयो पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाव सुर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल तारन हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना।

नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे। हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताणे। जो तु पावे सो प्रवाण,

स्वामी सा मसलत प्रवान रहाओ पद परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुर रखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर भाखे जिन कै मन साचा विश्वास पेख पे स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखेओ तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कतहो ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत पूत नहीं बिछड़े तो संगी गनिये बिनस जाए जो निमक मैं तो अल्प सुख भनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कश ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई आशल अशेर अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप साम देव दयाल प्रभ।

मार दूध जैसे बाले सागर मैं बोध पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री महला पंजवा पय कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बहार ठाकुर भगतन का हरावरिया सर्वठाई रखाओ ताको कोई न पहुंचे नकारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पूर्णवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हर जन टेक स्वामी जे को अपने ओट समारे जैसा बित तैसा होए वर्त अपना बल नहीं हारे हरहाव आन त्याग पै एक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जा को हारंग लागो इस जुग में तो कई तगै सूरा आत्म जिने सगल वस्ता के जाका सदगुर पूरा ठाकुर गाई गे आत्म रंग।

शरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ चूड निंद, ए भी करत गुदारी। मृत सिंह आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नानक प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन छाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म मोरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी

चरण कवन जाका मन रागयो अमेर सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा राव जय जय पेखो तय नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक

नाम रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाईए प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाईए दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन भोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से शोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबचनी प्रसव लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया।

सूवे पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ, कोई हो अक्रम रत कोई तीर्थ नाया, दासी हर का राम ते आया, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर जामी।

बखानो चंचल मान दहत को धावत अचल जाए ठहरानो कहो नानक हे बिदको जो नर मुक्त ताए तुम मानो तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाओ करो जेवद मन को संसार चूक।

प्रेम भगत प्रामन पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जावे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेव करे समाए पूज सिला

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नहावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा निद दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभ सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण तिर स्यों प्रीत प्यारी तिर कर सोहे नार।

कदे ना विसारी अनदिन सुमारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अनदिन विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा नेहो पूरे सतगुरे सत्संगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो अनदिन रहे लिवलाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन पावे सदा अतीत बैरागी फलत पलत सोभा जग अंतर आराम नाम ले लागी हरख सोग दुहा ते मुक्ता जो प्रव करे सो भावे सतसंगत मिले वडभाग ता हरस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हो मेर होया मेरी मेरी कर्तव्य खावे जो प्रव दे ते चेते नाही अंत गया पछतावे तिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्तर माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुखो जम जोया जियो कर कृपा लियो मिलाए महल घर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे हुक्मन सुख पाया अनदन जपत रहे दिन राती तेजे नाम त्याया नामो नाम मिली वड्याई नानक नाम मन पावे कर कृपा लिहु मिलाए मैं

एक नाम निरंजनो जियो, तू दाता दातार सर्व दुख पंजनो जियो, दुख हरत करता सुखे स्वामी शरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा पल एक मह तराया, पूरे या सर्वथाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो, बिनवंत नांग सदा सिमरी सर्व दुख पय पंजनो, आप लिगे लड़ लाए कृपा तारिया जियो, मोए निर्गुण नीज अनाथ प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार नाम अमोले जियो, नित जपे तेरे दास पुरख अतोले जियो, संत रसन रूठा आप तूठा हर से सही मातया, गुर चरण लागे महापाग सदा अनदिन जागया, सदा सदा सिमर तब्द स्वामी सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक तूर साधु ना प्रभु अमोलई, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की, एक ओंकार सदगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरू मर मना जाना, संत संगत आराम हृदय बसाई रहाओ, हनुमान सरगरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, प्यार वेद आर सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना, कह कबीर सो परमे नाही पगलग राम रहे सरनाही, तिन ते पैर पैर ते करिया आप कटे तन छीजे, काल हेरी फिरे बदक ज्यो कहो कमन बिद कीजे, सोदन आमन लागा माल पिता भाई सुध बनता, कहो कऊ है का रहाओ, जब लग जोत काया मैं बरत आपा पशु न बूझे, लाल चकरे जीवन पद कारण लोचन कशु न सूझे, कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना, जो जन पाओ भगत कह जाने ताको अचरज काहो, ज्यों जा जल में पैसन निकसे त्यों तुर मिलो जुलाहो, हर के लोगा मैं तो मत का फोरा, जो तन कहसी तजे कबीरा, रमैये

के नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पारे जोजन छद चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा से करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बय रागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो छत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना तार मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का तेता दर्शन पाओ इत कर पगत करे जो जान तेन पौ सगल चुकाइये तहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला जो कुरंक निसनाद बालहा त्यो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूढ़ो रूप रूढ़ो अतरंग रूढ़ो मेरो रामैया अरहाव जो तरणी को इंद्र बालगा कुसुम्बा जैसे पवन।

नाम फूल माला पार अठारे सगल जूठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्प नाम तेरा तुही क्यबर ठोलारे। दस अठ अड़सठ चारे खानी एह वर्तन गए सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। पनास

मस्तक बस्ता सुर श्री स्नान रे भोजन मध्य मिले ओ सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीट सरी विश्व का दीपक स्वामी ता तेरे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बांधवा कर्म कर अरण पिंगला अनक पादक हरता तेरे फौन नासरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लहे ना पार री कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत से सी ते लक्ष्मी कल्प तार शीघ्र सुनागर नतीचे नाथं कर्म कर खार मफीट सरी दादी ले लंका गाड़ ओ पाड़ी ले रावण बाण सल बसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफीट सरी पूर्व लो किरत कर्म ना मिटेरी कर गेहन ताचे मुए जापी ले राम ते नामं पदत तरलोचन राम जी श्री सायन तूब दीप कृत साज आरती वार ने जाओ कमला पति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को हरहाओ ओतम दीरा निर्मल बाती तुही निरंजन कमला पाती अरामा भगत रामानंद जाने पूर्ण परमानंद बखाने।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले तो गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोल कहे पारी बिन गाक मी का काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मान गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एका वारी माया को अंग बिख चाखा। हर घर साध मिलो जननी के हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी थाम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है तो वड़ अगमड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा अंबार कशु ना जाने गातमित तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना। हर कृपा तार दीजे मत ऊतम कर लीजे मुग्ध सयाना। मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट।

आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन कर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मिल हो, गुर मिले हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिली गे गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत सरी महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। मन राम ना पीना ले लाहा, किन किन भगत करे दिन राती। गुरमत भगत ओ महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा। मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत बस आवे। मन तन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा। हर गुण गाय सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा कर माधो। हर हर नाम ओ महाराम, जप जगदीश जपो मन माहा। हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे। जप नानक भगत ओ महाराम, जैत सरी महला चौथा। आपे जोगी जुत जुगा।

दूख आराधन दूख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोर सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा तंत संग पावे जो नानक जिस भौर न होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान करा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सत्संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा कहो नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जा को पय गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वा को व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी।

इतन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उधरे प्रभ होए सो प्रसन्ना श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसनं रचत मूढ़ अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोह पौड़ी सुपने से चित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस कोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय तंदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप पुराया श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जित ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण है कौतक कोड़ तमाशे चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या टूस मगरी पेख सद कर जानिया।

नाद को रंग के बेदया सनम उड़तावे पवर लोभी कुसुम्बास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजावे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभावे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहू चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरिय होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामं सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सर बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सो है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद करण आरमण संजोग पूर्ण है गोपाल दस फेटं सफल नांग सो मुहूर्त कीव न सकता पाए सुख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संजोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर घर त्याए कै मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप।

अवर न कहू तानी। ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा अमर हर जने नहीं निकटानी। निरभ हो रहे ले एक नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तोखा कहां व्यापे जाको ओढ़ तुहारी। अरहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी। तो सुहिया तन उस जन्मा नानत बलिहारी। टोडी महला पंजवा हर दूजा चौपदे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मान दह दिस तायो माया मगन स्वाद लो मोयो। तिन प्रभ आप पुरायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो। एक मोहतना यो मन लायो बिगसो पेख रंग कसुंभ को पार गए जो हुन जायो। चरण कमल स्यो पाओ न कीनो नय सत पुरख मनायो। ताकत को तावे बो पाती क्यों तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो एक निमख न कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखयो न बूझो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेव ते आयो। पंच दूत राज संगत गोष्ट मतवारो मधमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत बछल सुन आयो। नानक पाग प्रयोहर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पनवा मानुख बिन बूझे बिरथा आया। अनक सा सीगार बो करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए कृपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा यत ही काजन आया। कर आ परन सवारी सेजा कामन थाट बनाया। तंग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया। सारो दिन समझूरी करता तो मूसले शराया। पीत पयो बेगारी न्याई हर के कामन आया। पयो अनुग्रहो जाको प्रभ को तिस हृदय नाम साया। सा संगत कै पाछे परयो जन नानक हरस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत। तैसी बुद्ध करो परगास लागे प्रसंग प्रीत। रहाओ ता तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो। मां पदते होत पुनीत।

इन्नी आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप। आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ। नानक सरन परे दुख पंजन चा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे। रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई गे माया रच बंद हारे। चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचयो जिद भूख तसायो। अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानको तरया। टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ। वड्डे पा गुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताप्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जाद घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के गृह में आया। टोडी महला पंजवा हर चौथा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। रूड़ो महा रंगो लोड़ काली हर नीहो ना होए। रहाओ हाउ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुर मिल परम गवाया हे एबद पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुर माथे एबद नानक हर नयन अलोए। टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे ही ओ महराज री मायो तीघर न्याई मुए फाक्यो रे। रहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महराज रो गाथ वाउ सुन लुबड़ो ने भगड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख सब जन सगलो थारे सगले प्राशित मिट्यो रे जाको लैणो महराज री गाठड़ियो जर नानक गर्भास ना पौड़ो रे। टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंते सगल दूर कीन। रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेखो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे पति।

जप मन राम नाम निस्तारा कोट कोटंतर के पाप सब खोवे हर भवजिल पार उतारा रखाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भव निर्वैर निरंकारा हर निगट बस्त कछ नजर न आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे सहो सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे तो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याये सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर राखे उदर मंजारा सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान हर अंत शिडामन हारा जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा ते पाएगे हर जप नानक नाम अधारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर हर नाम नित ध्याय जो इच्छे सोई फल पावे।

न पावे विण कर्मा किश पाइये नाही जे वो तेरा तावे। लब लोभ अंकार की माती माया माए समाणी इन्नी बाती सो पाइये नाही भई कामण एयाणी। जाए पुछो सुहागणी वाहे किन्नी बाती सो पाईए जो किश करे सो भला कर मानिए। हिकमत हुक्म चुकाइए जा के प्रेम पदार्थ पाइए तौ चरणी चित लाइए। सौ कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परमल लाइए। एव कह सुहागणी पैणे किन्नी बाती सो पाइए। आप गवाईगे ता सो पाइगे और कैसी चतराई। सौ नदर कर देखे सो दिन लिख कामण नौ निद पाई। अपने कंत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई। ऐसे रंग राती सहज की माती अहे निस पाए समाणी। सुंदर साए स्वरूप चखण कहिए सा सियाणी। तिलंग महला पहला

राम सुमावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुरसिख आए मिल

अमीन तेरा नाम है अदारा अरहाव करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दर पेश तू मनी दरियाओ तू देहंद तू विशियार तू तनी देहे लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे ते स्वामी बगसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बाल बल जाओ हौ बल बल जाओ नीकी तेरी बेगारी आले तेरा नाओ अरहाओ कुजा आमत कुजा रवती कुजा मेरवी द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी।

तीर्थ मल मल नहाय, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, ये को भय अलाए, अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगय पुछ न हो गई, जे

करी जे को लए विकाए नानक काम ना आवई जिद तन नाही सच्चा नाव। सूही महला पहला कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंता जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे है जोग ना तीर्थ नाई है अंजन महे नरंजन रही है जोग जुगत एव पाई है सतगुर भेटे ता सहसा टूटे तावत वर्ज रहाई है निजर चरे सह तुन लागे करगी परचा पाई है अंजन माहे नरंजन।

परपुरलीना तू आपे सर्व समाना रहाओ मन तारा जी चित तुला तेरी सेव सराब कमावा घट ही भीतर सो सो तोली

तोर लिख पाया पंच तत्कार तुद सृट सब साजी कोई सेवा करहो जे किछ कीता होवे एक ना सतगुर मेल तू बुझावे एक मनमुख करे से रोवे हर की वड्याई हो आख ना साका हो मूर्ख मुगध नीचाण जन नानक तौहर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवां कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी कर जैसे बाजी पाई नाना रूप तेर दिखलाई सा

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीज, उचर कठोर।

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा

आग प्राप्त होई अरहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोनी दूता लाई प्रेम शोगा करत कसाई निर्दय जंत तिरदया न पाई अनक जन्म बीतियन परमाई तरवास न देवे दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरण नानक गद पाई अराग सूही

तेरे सेवक कौ पौ किछ नाही, जाम नहीं आवे नेरे रहाओ, जो तेरे रंग रते स्वामी, इनका जन्म मरण दुख नस, तेरी बख्श न मेटे कोई, सदगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख पर पायन, आड़ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट ले सद है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जेन कल राखी मेरी, सूखी महला पंजवा, सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नगारे, जित तू लाभ है, तित हम लाग, क्या ए जंत विचारे, मेरे राम जी तू प्रवे अंतर जामी, कर कृपा गुरुदेव दयाला, गुण गावा नित स्वामी, अरहाव आठ पैर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पोतरी है, आप त्या हुई है सब रेणा, जीवत्या इो मरिय, सफल जन्म जिसका जग पीतर, साध संग नव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जे दया करे प्रवे आपे, दीन दयाल किरपाल प्रस्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक साधर वाला, राग सूही अष्टपदियां, महला पहला कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

दो दीवी अंध कोर कब मोहाइए गर्म से कर चोर के शुरू आईए गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जकाइए शब्द निवारी आग जोत दी पाईए लाल रतन हर नाम गुरसुरत बजाइए सदा रहे नेकाम जे गुरमत पाईए आराधे हर नाव मन वसाइए नानक मेल मिलाए जे तुद पाईए सूही महला पहला मनोना नाम सार आए न सत्याई है ज्यों राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है मैं अंधले हर नाम लगती टोनी रहो साहिब की टेक ना मोह मोहनी रहा जय देखो तय नाल गुर देखा लिया अंतर भार पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुल पावे तिवे रिजाए परम पौ पंजना।

सुर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद तत दी चारिया ना बिना सुख नाहे सर पर हारिया आवे जाए अनेक मर मर जन्मते बिन बूझे सावाद जोनी परमते जिनको पय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस हे विसर नहीं दा तार अपना नाम देहो

आओ कन्हेरा सुन प्रा मेरा, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना तां तन करी सरसी राम। हार मोहेड़ी साच ठाकुर देख रहंसी राम। गुण संग रहंसी खरी सरसी, जा रवी रंग रत। अवगुण मार गुणी कर छाया, पूरे पुरख विधाते। तस्कर मारवसी पंचायन, अदल करे विचारे। नानक राम नाम निस्तार, गुरमत मिले प्यारे। वार पाएड़ा बालड़िए, आस्था मनसा पूरी राम। फिर रावेड़ी शब्द रली, रब रहया न दूरी राम। प्रा दूर न होई कड़कड़ सोई, तिसकी नार सबाई। आपे रसिया आपे रावे, जो ते दी वड्याई। अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाई है। नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाई है। फिर उचड़िए माड़िए, त्यो लोवा सिरता जा राम। हाँ बिसु पई देख गुणा, अनहद शब्द अगा जा राम। शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानू।

आए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चुकाया अनदिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन कार सदगी सोयला जे सदगुर सेव सुमाए बिन सदगुर जग परम फुलाया हर का मैल न पाया राम गुरमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावे रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जो जो सदगी जाते साची भगत करे दर जापे कर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोयला सच्ची सच बाणी सबदे की सुख होई सूही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए ता गुरचरणी चितलाए राम सदा होवे सुहागणी हर जीव मरे ना जाए राम हर जीव मरे ना जाए गुर के सहज सुभाए साथन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के शब्द सिगारी मेरा प्रभ साचा सदगी साचा जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिरावे अपना जिन गुरचरणी चितलाया फिर पायरड़ा बालड़िए अंधन सहजे माती राम गुरमती मन अंध पया तेत तान मैल नाराती राम तेत तान मैल नाराती हर प्रवराती मेरा प्रा मेल मिलाए अंधन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया

चाय मन वजी वधाई। जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई नानक कृपा करके मिले विछड़ कदे ना जाई। सूगी महला चौथा हर पहलड़ी लाव, प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जीओ, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जीओ, धर्म दृढ़ हो हर नाम ते आओ, सिमरत नाम दृढ़ाया सदगुर गुर पूरा आराध हो, तब केलविख पाप गवाया, सहज आनंद हुआ वडभागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया, हर दूजड़ी लाभ सदगुर पुरख मला।

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसाते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया।

नाही, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सब बलिहारी, समलिया सच थान, मान महत सच पाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइये प्रभु ते आई है बाहुड़ जोन ना आई है गुर चरणी लागे प्रम पौ पागे मन चिंदिया फल पाई है हार गुण नित गाए नाम त्याए फिर सोग नहीं संतापे नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस परतापे हर हरे हर गुण दे हर संतन के वसे आए राम संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा थारी सफल जन्म हुआ पो पागा हर भेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत।

ऊर रहया काट काट अबनासी थान थनन तरसाई को नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी मन लाई सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी।

प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम। सुन सुन यो मन निर्मल होवे कटिए काल की फासी राम। कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सो ज्ञाना।

हार गुण सुनिए अवनासी, करोड़ हस्त तेरी टेल कमाव है, चरण चले प्रभ महार ग्राम, पाव सागर नाभ हर सेवा, जो चढ़े तेस तार ग्राम, भवजल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे, महाविकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे, मन बांझत फल पा।

गुरमुखे सदकरणी सारी बिनसे प्रम पे झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बने आए जो प्रभ अपना करया कर में नवनिध परे भंडारा।

तो प्रभ अपना सदा ते आईए, सोवत बैसत खलिया, गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल तल मही जल सोई, जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर न कोई, मेरा कर बनिया बनताल बनिया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोया मीत साजन सरसे, गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु त्याए साचा, सगल इच्छा पाईया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वाधाइया, करी नदर स्वामी सुखे गामी, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपिया।

दय दिस पूर रहे आजा स्वामी कीमत कहन न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अचल नीव रखाई ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा ने सुनिए राम अणगल चोज भगत पा पंजन अणगल वाजे तुनिए राम अणगल चुनकारे तत् विचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अरद है मैल सब कट है किल बग सगले खोवे तै जन्म न मरना आमन जाना बौड़ न पाइये जोनिए नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इश पुनिए सूही महला पंजवा संतां के कार्ज आप खलोया हर कम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साध कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाते सगल वसूरे पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नव निध सिद्ध दीने करते ओट न आवे काई राम खात खर्चित बिलशित सुख पाया करते की दात सुवाई राम दात सुवाई निखुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगल सगले उठ नाठे दुख न नेड़े आया सांत सहज आनंद कनेरे बिरसी पूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचर जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मांस क्या वे चारा राम भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करे जयकारा राम गुण गाए गोविंद अनद उपजे साध

मेल लहे गुर शब्द बिचारा सच रते से निर्मल हो में तज विकारा जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सू विगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ।

आपे सृष्ट उपायन आपे फुन गोई जुग चारे सा पक्ष की किन कीमत होई। सतगुर एक विखालिया मान तन सुख होई गुरमुख सदा सलाई है करता करे सोई। श्लोक मोहला दूजा जिन्ना पाओ तिन नाए पाओ मुझ पौ ने पव्या नानके उपटंतरा तित दीबान गया। महला दूज तुरदे को तुरदा मिले उड़ते को उड़ता जीवते को जीवता मिले मुए को मुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्द विचारी। होमे मार मन निर्मला हर नाम उर तारी कोठे मंडप माड़िया लग पे गुवारी। जिन किए तसे ना जाननी मनमुख गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सत्या क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीज कामण तो सीगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जे कंत न आवई ए वै बिरथा जाए। कामण पिरमन मानिया तो बनिया सीगार किया तो प्रवान है जा सो तरे प्यार पौ सिगार तंबोल रस

काजल फूल तंबूल रस ले तन किया सीगार सेजे कंतन आयो एवे पया विकार महला तीजा तन पिर ए न आखियन बैन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन पिर कहिए सोए पौड़ी भय बिन भगत न होवई नाम न लगे प्यार सदगुर मिले पौ उपजे पए पाए रंग सवार तन मारता रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अद सोना पेटिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिद सो सच वरते संसार श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जेन रच रचना हम किए।

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो में अवर ना काजा, अन दिन अंत होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर वेख, बौड़ ना मरे ना जम पिख, कर ही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अन दिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजे जंत जना, जप मन आराम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हिरदे हर बसना रहाओ, माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो, हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए, हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे, हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन।

मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निवत रहे गुर शब्द अखूट।

अपनाया, सेमर सेमर मन तन सुखी, नानक निरपया, बिलावल मुहला पंजवा, कर तर मस्तक थापया, नाम दी नूदान, सबल सेवा पार ब्रह्म की, ताकि नहीं हान, आपे ही प्रवराखता, भगतन की आन, जो जो चितवे साध जान, जो लेता मान रखाओ, शरण परे चरणारविंद, जन प्रभु के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले, ज्योति ज्योत समान, बलावल मुहल्ला पंजवा, चरण कमल का आसरा, दीनू प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे,

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बख्शेन अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवणी ए ना सुनाए।

खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

दयाल स्वामी सर्वस संत जना तनमाल नानक जाचक दर्श प्रा मांगे संत जना की मिले रवाल बिलावल मोहल्ला पंजवां सिमरत नाम कूड़ जतन पए साध

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव।

बनायो आप अपने सेव की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक सरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

क्या गुण तेरे सार संहारी, सास सास प्रा तुम्हें चितारी, कृपा निध प्रवदीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रव आपे। बिलावल मोहल्ला पंजवा। तान तन जोबन चलत गया, आराम नाम का भजन ना कीनो, करत विकार निस्पोर भया रहाओ, अंग प्रकार भोजन नित खाते।

मूला नसो प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अभमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुद अजान अज्ञानी रखे थार दए, तो नानक

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावे आमोय नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायो री अरहाओ दूजा बिलावल महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रहाओ आहे मन अवरना भावे चरणावे चरणावे। उलज्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटीए रिखते छूटीए मान हर सकूटीए संग साधु उल्टीए।

प्राण पुकारे परम करो खट कर्म दरड़ैया मन मुख पाखंड परम विभूते लोभ लहर नाभ पार बुड़ैया नाम जपो नामे गल पावो सिमरत शास्त्र नाम दरड़ैया होमे जाए तन निर्मल होवे गुरमुख परते परम पद पैया इहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत जाए वाजे जित फावे तित राहे चलैया बिलावल मोहल्ला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हों बाल बाल सदगुर सदपुरखैया राम नाम मेरे प्राण मसाए सदगुर परस हर नाम समैया जन कीटे हर नाम टकैया सदगुर की तर लागा जाव गुर कृपा ते हर दर लहिया रखाओ यो शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत कढ़ैया लाल जवे हर नाम परगासिया पांडे पाओ पवे तित अय्या दासन दास दास होई रहिए योजन राम भगत निज पैया मन बुध अर्प थरो गुर आगे गुर प्रसादी मैं आकाश कसैया मन मुख माया मोहे आपे यो मंत्रसना जल तित खैया गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया यो मन नाचे सदगुर आगे अनगल शब्द तुन तूर बजैया हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया हर की रंग रता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज करतार चुए अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लैया मन हर कर्म करे अभमानी जो बालक बालू कर उसरैया आवे लहर सुमंद सागर की खिन मैं पिन पिन टह पैया हर सर सागर हर है आपे यो जग है सब खेल खेलैया ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया बिलावल मोहल्ला चौथा सतगुर परचे मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन पसम दरड़ैया अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया मेरे मन साध संगत मिल रहैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रखाओ तदे ग्रस्त पया बनवासी एकन मनुआ टिके ना टकैया धावत ताए तदे कर आवे हर घर साधु शरण पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे गुर कै शब्द नराज सुख लैया उबजी तर्क दिगंबर हुआ मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साथ दया कर लैया आसन सिद्ध सिखे बहुत तेरे मन मांगे रिद सिद्ध चेटक चेटकैया तृप्त संतोख मन सांतन आवे मिर साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया अंडज जेरज सेत उत्खुज तवर्ण रूप जीजन तो पैया साधु शरण परे सो उबरे खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया नामा जय दियो कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमियार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जट सैन मिलया हर दैया संत जना की हर पैज रखाई भगत वचल।

अवर के जाने को पीर परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हूँ आकल विकल पई गुर देखे, हौन लोड पोड़ होए पैया रहाओ, हौ निरखत फिरो सब देह दिसंतर, मैं प्र देखन को बहुत मन चैया, मान तन काढ़ दियो गुर आगे, जिन हर प्र मार्ग पंथ दिखैया।

ओत पोत जग रहया परोई, आपे करता करे सोई, नाम रते सदा सुख होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हिरदे जपनी जपो गुणतासा, हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी, ज्ञान पग लग त्याओ हुए दासन दासा रहाओ। सोमवार सज रहया समाय, तिस की कीमत कही न जाए, आख आख रहे सब लिवलाए, जे देवे ते पल्ले पाए, अगम गोचर लिखिया ना जाए, गुर के शब्द हर रहया समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदे लाया, आ बुझाए सोई बूझे, गुर के शब्द दार कर सूझे, प्रेम भगत करे लिवलाए, होमे ममता शब्द जलाए, बुधवार आपे बुध सार, गुरम करनी शब्द विचार, नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे होमे मलखोए, तर सच्चे तर सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए, लहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवे देवन हार, जो देवे तिस कौ बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए, नानक नाम रखो उरतार।

जिस लहे मिलाई, शुक्रवार प्रवरया समाई, आत उपाय सब कीमत पाई, गुरमुख होवे सो करे विचार, सच संजम

आया मनसुख सुमाना राम गुर तुटे हर प्रापाया रंग रलिया माना राम वड़फागिया सुहागणी हर मस्तक माना राम हर प्रभर सुहाग है नानक मन पाना राम निमाणिया हर मान है हर प्रभर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम मेरे हर प्रभावे सो करे हर रंग हर रापे राम जन नानक सहज मलाया हर रस हर थापे राम मानस जन्म हर पाईये हर रावण वेरा राम गुरमुख मिल सुहागणी रंग होए कन्हेरा राम जिन मानस जन्म न पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राग प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वच्छल हर नाम है गुरमुखर लीना राम बिन हर नाम ना जीवंदे ज्यों जल बिन मीना राम सबल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावल महला चौथा सलोक हर प्रभ सजन लोड़ लहो।

आर सच्चा न्याय कूड़ यारा के मोह फिटकी है, सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याय है, सिर निंदक शाई जन नानक सच आरा दया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है, जे हर प्राबक्ष करे उपावा सिर उपाओ है, नाव प्राप्त होए अंदर शीतल शांत है, हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना पहनना नानक नाए वड्याई होए। महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन पाए गुणी निधान, सुखदाता तेरे मन वसे होमे जाए अभिमान।

तू सर्व व्यापी, तुम समसर नहीं दयाल, मोहे समसर पापी ही बलावल, नेत उट कोरी गागर आने, लीप्त जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूजे, हार हार रस लपटेओ, हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपुते, तब ते सुगना पयो रखाओ, सुनो जिठानी, सुनो दिरानी, अचरज एक पयो, सात सूत इन मुंडगे खोए, क्यों मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक कर स्वामी, तो गुरु राम दयो, संत प्रहलाद की पैज न राखी, हर नाश नख बिदरेओ, करके देव पितर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो, कहेत कबीर सगल पाप खंडन, संत है लय उधरेओ बिलावल, को हर समान नहीं राजा, ए पूबत सब दिस चार के, झूठे करत दिवाजा रखाओ, तेरो जन होए सोए कद डोले, तीन पवन पर शाजा, हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा।

राख ले हो हमते बिगरी शील तर्म जा भगत न कीनी हों अभमान टेढ़ पगरी रहाओ। आमर जान संची एक आया ए मिथ्या काची गगरी जिने नवाज साझम किए इसे बसार अवर लगरी तंदक तोये साध नहीं कही हो तन परे तुमरी पगरी कहे कबीर ए बिनती सुनियो मत का लहो जमकी खबरी बिलावल दर मादे ठाडे दरबार उज बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार रखाओ। तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत तो जस तुमार मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा बेप सुदामा तिन को कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत ना बार बिलावल डंडा मुंद्रा खिंथा आधारी प्रम के पाए पवे पेहतारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पज बवरे रघाओ जे तू जाच है तू तिर पवन भोगी। कहे कबीर के सौ जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत न उपजे जन को जन कहां करे बेचारे रघाओ। त्रिग तान त्रिग तान त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुध फन्नी इस माया को दृढ़ कर रखो बंदे आप चन्नी। क्या खेती क्या लेवा देई परपंच चूड़ गुमाना कहे कबीर ते अंत बगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम जोत पर खोतमो जा के रेखना रूप रे मन हर पाए प्रम तजो जग जीवन राम रखाओ। आवत कछु ना दिसई न दिसे जात जय पूजे बिनसे तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी तुग सहज विचार कहे कबीर सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लागी जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रखाओ। कासी ते तुन उबजे तुन कासी जाई कासी फूटी पणता तुन कहा समाई त्रिकुटी संद मैं पेखिया काटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी आप आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जाके हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौन दिता के सहज सहज बोले देव रखाव तावे माजो सब मैं पिख है कुटल गांड जब खुले देव बारंग बार माया ते अटके लै नरजा मन तोले देव जय ओ जाए तही सुख पावे माया तासना चुले देव कहे कबीर मेरा मन मान

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी, गुण कहो मेरे पाप के, ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावे।

जाके अंतर से प्रव्याप ताके हृदय होए परगास। भगत पाए हर कीर्तन करिए जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए।

राम रतन पसे मन आए, सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निट कर जान। पाए भगत प्रभु कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहूं सच वापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सो पावे जन तूर। राग गोंड अष्टपदियां, महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर नमस्कार पूरे गुरुदेव, सबल मूर्त

सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कह ठांडी दरबार, तरन तेरी मोको निस्तार। सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी, जाओ लग प्राण तऊ लग संगे, नहे त चली बेग उठ नंगे। सुहागन पवन त्रै लिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे, बड़े भूबत राजे हैं सीधे। सुहागन उर्वा

ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रखाओ। जैसे गाय का बच्चा छूटला थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया गुर पीड़ित अलख लखाया। जैसे बिखे हिद परनारी।

बूंद में सागर तवन बुझे बिद जाने, ओत खुश चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन में रहन रहन में दिनियर, उसन सीध बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुर बिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, पूजो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिनकै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई।